0: यह मत सोचो कि वो हाँ कहेगी या ना, सिर्फ अपने दिल की आवाज को सुनो और जो दिल कहे उसे कर दो।
1: मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है, हर मोड़ आसान नहीं होता और हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो मोहब्बत का साथ क्यों छोड़ें?